आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

0: बापुआ गायन तो जबरदस्त हिट छे।
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ओलिव 106.3 FM।

listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Hi, Radio Olive 106.3 listeners. This is Shah Rukh Khan.
2: Hi, this is Ajay Devgan.
3: Hi, this is Akshay Kumar.
4: Hi, this is Anushka Sharma.
5: And I'm Ashok Vasani.
6: This is Ranveer Singh. Stay tuned.

एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: बैक फ्रॉम वेकेशन इन योर होम टाउन, तो रूटीन स्टार्ट करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट प्राइसेस पर, सिर्फ नेस्टो हाइपरमार्केट में। ग्रोसरीज हो, फ्रेश फूड हो या डेली एसेंशियल्स, सब कुछ एक ही जगह अमेजिंग प्राइसेस पर। तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी प्रॉफिटेबल। नेस्टो हाइपरमार्केट, 152nd ब्रांच, नाउ ओपन इन ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, अलगराफा।
2: रेडियो

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Now listen.
2: Get up.
1: That's right.

0: बावरा समन भागे तेरे पीछे, बावरा समन, बावरा समन।
1: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: बैक फ्रॉम वेकेशन इन योर होम टाउन, तो रूटीन स्टार्ट करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट प्राइसेस पर, सिर्फ नेस्टो हाइपरमार्केट में। ग्रोसरीज हो, फ्रेश फूड हो या डेली एसेंशियल्स, सब कुछ एक ही जगह अमेजिंग प्राइसेस पर। तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी प्रॉफिटेबल, नेस्टो हाइपरमार्केट, 152nd ब्रांच, नाउ ओपन इन ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, अलगराफा।
3: This is Deepika Padukone.
4: Deepika Padukone.
3: Radio Olive 106.3.
5: I'm in number one. Radio Olive.
6: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian Radio Network.
1: आप सुन रहे हैं Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.

आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास. आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ऑलिव 106.3 FM.

कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
2: रेडी टू लर्न, टू प्ले, टू ग्रो विद मसराती।
3: इस फूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मसराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ। ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मसराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: रेडी टू लर्न, टू प्ले, टू ग्रो विद मासराती।
3: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मासराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ। ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मासराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस।
4: हाय रेडियो ऑलिव, 106.3 लिसनर्स, दिस इज शाहरुख खान।
5: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क। You are listening to Qatar's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM. Jio Bindas.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है। कूल सॉन्ग।

आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: हेलो, मैं हूँ नीना गुप्ता।
2: नीना गुप्ता,
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3।
3: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
4: रेडियो ऑलिव, आवे नंबर वन।
3: यू आर लिसनिंग टू Radio Olive 106.3 FM, Geo Bindas.

गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ऑलिव 106.3

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: back from vacation in your hometown, तो routine start करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब कतर में shopping करें best prices पर, सिर्फ Nesto Hypermarket में। Groceries हो, fresh food हो या daily essentials, सब कुछ एक ही जगह amazing prices पर। तो अपनी shopping को बनाए और भी profitable। Nesto Hypermarket, 152nd branch now open in Old Passport Office, Algarafa.
1: Song. Radio Olive par aane wala gaana cool song of the hour song of the
2: hour kya baat hai sir kya baat ye baat hai cool song

Good morning. You are listening Radio Olive 106.3 FM. This is me, Muskan, with you. और शो का नाम है Of course, Life Must है. So Saturday है और मुझे लगता है कि आज दुनिया में ना दो तरह के लोग हैं. एक वो जो सुबह उठते ही बोलते हैं कि आज पूरा दिन मेरा है, और दूसरे वो जो सैटरडे को भी 8 बजे उठकर किचन में घूम रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि कल संडे है, कुछ प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, कल से नो ऑफिस जाना है. मतलब बॉडी अभी वीकेंड में है लेकिन दिमाग ने ऑलरेडी ऑफिस का अटेंडेंस लगा दिया है. और ये फीलिंग एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग है. हमारे लिए वीकेंड का मतलब सिर्फ छुट्टी नहीं है, मतलब वीकेंड एक साइकोलॉजिकल बाउंड्री भी है, एक पॉइंट यू नो जहां ब्रेन को लगता है कि अब ऑब्लिगेशंस थोड़ी देर के लिए पॉज हो सकती हैं. सिर्फ फ्राइडे को मूड हल्का लगता है, सैटरडे को फ्रीडम पीक पर होती है, और फिर जैसे जैसे सैटरडे इवनिंग आती है दिमाग ना धीरे से संडे और मंडे की तरफ देखने लगता है. लेकिन आज एक डील करते हैं, आज सैटरडे है और संडे को संडे की तरह ही रहने देते हैं, मतलब उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं. आज का ब्रेकफास्ट जो है वो मेरा तो हो चुका है. यू टेल मी कि आपके ब्रेकफास्ट में आपने आज क्या इंजॉय किया है. चाय थोड़ी देर तक चली, और अगर आपका लिटरली कोई प्लान नहीं है तो वो भी एक परफेक्टली वैलिड प्लान है. व्हाट्सएप करके बताइए कि सैटरडे को आपके दिमाग में यू नो संडे के बारे में कब आप सोचना शुरू करते हो, शाम को, रात को, या फिर संडे मॉर्निंग तक आपको याद ही नहीं आता कि भाई अब तो ऑफिस जाना है. 3311063 इज माई नंबर. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो. बिंदास.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: रेडी टू लर्न, टू प्ले, टू ग्रो विद मज़राती।
2: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मज़राती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ। ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मज़राती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस।
3: आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3।
0: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

So, आपके साथ कभी हुआ है? ऑफिस का एक छोटा सा काम पेंडिंग है, बस एक मेल भेजनी है, आप घर आ गए हो, डिनर भी कर लिया है, फैमिली के साथ बैठे हो, टीवी चल रहा है, लेकिन दिमाग में वो मेल, फिर आप सोच रहे होते हो कि यार संडे को कर लूंगी पक्का, मतलब वीक स्टार्ट होते 5 मिनट के बाद सब्जेक्ट लाइन क्या रखूंगी, मतलब दिमाग में पूरा टाइम चल रहा होता है। ये जो अनफिनिश्ड काम है ना, जो दिमाग में बार बार पॉपअप करता है, इसके पीछे एक फेमस साइकोलॉजिकल फिनोमिनल है जिसे कहते हैं ज़ेगरनिक इफेक्ट। साइकोलॉजिस्ट ब्लूमा ज़ेगरनिक ने ऑब्जर्व किया था कि इनकम्प्लीट टास्क ना हमारे दिमाग में कंप्लीट हो चुका टास्क की कंपैरिजन में ज़्यादा एक्टिव रहता है। यार ये तो मतलब जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि बिल्कुल सही बात है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि मैं सोने के बारे में सोच रही होती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ना ऐसे छूट जाती हैं कि चलो कल करेंगे, पर वो पूरा टाइम दिमाग में चलती रहती है। इसीलिए कभी कभी सैटरडे को भी ऑफिस हमारे घर आ जाता है, मतलब ऐसा लगता है कि यार कल से ऑफिस है, वो मेल्स रह गए थे, सब कर देती हूँ, फिर सुबह सुबह बहुत स्ट्रेस हो जाएगा, विदाउट इवन इन्विटेशन। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि सॉल्यूशन हमेशा काम कंप्लीट करना नहीं होता, कभी कभी ब्रेन को बस एक क्लियर सिग्नल चाहिए। ओके, अब मुझे ऐसा लगता है कि ओपन लूप को नाम मिल गया है इसका, और अगर आज कोई पेंडिंग काम आपके दिमाग में घूम रहा है, उसे मेंटली पकड़ के आप एक जगह पर रख दीजिए, और फिर उसको अगर कंप्लीट करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो फिर कल देखिएगा। आज सैटरडे को भी आपके दिमाग में कौन सा ऐसा अनफिनिश्ड काम है जो ऑफिस की तरह यू नो ओवर

0: टाइम आप कर रहे हो 3311063 इज माय नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

यार सोचिए, आपके सामने ना एक लाइब्रेरी है, शेल्स पर हजारों किताबें हैं, लेकिन ये किताब स्टोरी नहीं है, ये आपकी जिंदगी के डिफरेंट वर्जन्स हैं। एक किताब खोलते ही उसमें आपने वो जॉब चूज की जो आपने एक्चुअली रिजेक्ट कर दी थी। दूसरी किताब में आप किसी और सिटी में रह रहे हो। तीसरी किताब में आपने किसी रिलेशनशिप को कंटिन्यू किया। और चौथी किताब में आपने वो रिस्क ले लिया जिससे रियल लाइफ में आपको बहुत डर लगता था। ये आइडिया है मैट हैक की ब्यूटीफुल नॉवल द मिडनाइट लाइब्रेरी का। बहुत ही खूबसूरत किताब है। इस किताब की ऐसे कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ। सो मैं इस बुक को इसीलिए इतना इंटरेस्टिंग मान रही हूँ क्योंकि हम सबके अंदर एक छोटी सी इमेजिनरी लाइब्रेरी होती है। हम सोचते हैं कि यार अगर मैंने वो जॉब ले ली होती, अगर मैंने उसे कॉल कर दिया होता, अगर मैंने उस सिटी को चूज़ किया होता या उस कंट्री को चूज़ किया होता, मतलब इफ़ एंड बट्स ना हमारे अंदर होते ही हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम ऑल्टरनेट लाइफ को सिर्फ उसके बेस्ट मोमेंट में इमेजिन करते हैं। हम सोचते हैं कि वहाँ सब परफेक्ट होता, लेकिन आपको क्या पता वहाँ भी इतने ही बिल्स होते, ट्रैफिक होता, ठीक है, बैड डेज होते, रॉन्ग डिसीजंस होते। और शायद इसीलिए बुक का डीपर क्वेश्चन भी यही है कि क्या परफेक्ट लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती भी है, या मीनिंगफुल लाइफ बनाना हमारा काम होता है। भाई आई फील कि जो है वो बेस्ट है। यू टेल मी, आपको क्या लगता है? अगर आप ऐसे ये किसी यू नो बुक के बारे में पढ़ो जैसे कि द मिडनाइट लाइब्रेरी, या फिर आपको ऐसी कोई किताब मिल जाए जिसमें आपको पता चल जाए कि अगर आपने वो चूज़ किया होता तो ऐसा होता, तो आप क्या यू नो पढ़ना पसंद करते? करियर के बारे में, लव के बारे में, कंट्री के बारे में, या कोई छोटा सा ऐसा डिसीजन जो आपको अंदर ही अंदर लगता है कि काश वो हो गया होता। 3311106 3 is my number. You are listening Radio Olive. Stay tuned. Jio Bindas.

फ्रॉम वेकेशन इन योर होम टाउन, तो रूटीन स्टार्ट करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट प्राइसेस पर, सिर्फ नेस्टो हाइपरमार्केट में। ग्रोसरीज हो, फ्रेश फूड हो या डेली एसेंशियल्स, सब कुछ एक ही जगह अमेजिंग प्राइसेस पर। तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी प्रॉफिटेबल। नेस्टो हाइपरमार्केट, 152nd ब्रांच, नाउ ओपन इन ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस अलगरा।

0: क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: In association with
2: Nesto Hypermarket, now open at Old Passport Office, Karafa.

यार ये जो इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है ना, ये मार्केटिंग की टेक्स्ट बुक में होनी ही चाहिए, लेकिन शुरू हुई एक यू नो प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक से। कोरिया में ब्यूटी क्रिएटर्स मिंडे अली जो है वो अपनी वैसलीन कलेक्शन दिखा रही थी, लेकिन प्रोनाउंसिएशन की वजह से वैसलीन सुनाई दिया बैसलीन, और इंटरनेट ने कहा कि बस अब तो बैसलीन ही है। वीडियो वायरल हो गई, मिलियंस ऑफ व्यूज आए, और अब यहाँ कोई नॉर्मल ब्रांड क्या करता, प्लीज प्रोनाउंस आर ब्रांड करेक्टली, या फिर थोड़ा कॉमेंट कर देता या छोड़ देता, लेकिन वैसलीन ने कहा ओके यू विन। ब्रांड ने अपनी सोशल मीडिया आइडेंटिटी को टेम्परेली बैसलीन कर दिया, मतलब बीफ और बॉल वाला बैसलीन, और क्रिएटर को मजाक मजाक में सीईओ ऑफ बैसलीन भी बना दिया। अब देखिए ना कितनी स्मार्ट चीज है, एक कंपनी अपनी इमेज कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रही, वो ऑडियंस के जोक पर पार्ट बन गई, और यही मॉडर्न मार्केटिंग का एक बड़ा चेंज भी है। पहले ना ब्रांड बोलता था कि हम कौन है, अब इंटरनेट भी बोलता है कि नहीं भाई तुम कौन हो ये हम डिसाइड करेंगे। इंडिया में तो हमने भी ब्रांड्स के नाम के अपने वर्जन्स बना दिए होते हैं, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स को हम कुछ और कहते हैं, डोमिनोज को कुछ और कहते हैं, स्विगी, जोमैटो, डिफरेंट डिफरेंट नाम, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, और हर फैमिली में एक मेंबर होता है जो किसी ब्रांड के नाम को ऐसे बोलता है कि पूरी फैमिली करेक्ट कर लेती है। लेकिन आप बताइए कि बचपन में आप किसी फेमस ब्रांड के नाम को कैसे गलत बोलते थे। व्हाट्सएप पर कन्फेशन कर सकते हैं, दिस इज मी मुस्कान विद यू, और शो का नाम है लाइफ मस्त है, नंबर है 3311063। Stay tuned, Jio Bindas.

भाई दिस इज फॉर मूवी लवर्स. इस हफ्ते ना बहुत सारी मूवी आई हैं. एक तो मुझे लगता है कि नेटफ्लिक्स पर जब आप जाओगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा. इवन दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी बहुत कुछ रिलीज हुआ है. लेकिन अगर थिएटर रिलीज की बात करूं तो अर्शद वारसी की न्यू फिल्म जीवन या भीमा कौन रिलीज हो चुकी है. और इस बार अर्शद एक नई डबल रोल में नजर आए हैं. नाम ही मतलब बता रहा है कुछ तो गड़बड़ है. स्टोरी में इंश्योरेंस स्कैम होता है, मिस्टेकन आइडेंटिटी और एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर सवाल सिंपल है, जो आदमी जो वो है भी या नहीं, मतलब दो आदमी है एक्चुअली. और अर्शद वारसी के लिए डबल रोल का आइडिया नेचुरली इंटरेस्टिंग है क्योंकि उनकी कॉमेडी का एक चार्म है कि वो कैरेक्टर को ना ओवरप्ले नहीं करते. उनके एक्सप्रेशन, पॉजेस, ऑकवर्डनेस, कभी कभी ना डायलॉग से पहले ही जोक डिलीवर हो जाता है. लेकिन फिल्म की रिव्यू मिक्स्ड आ रही है, मतलब किसी को पसंद आ रही है, किसी को पसंद नहीं आ रही है. सैटरडे को अगर आपका प्लान है कि यार जाएंगे थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, मूवी देखेंगे, देन आई हैव अ परफेक्ट क्वेश्चन फॉर यू. आप मूवी थिएटर में अर्शद वारसी के लिए जाओगे या फिर रिव्यूज इनके ओटीटी के लिए वेट करोगे? भाई मैं तो ओटीटी पर वेट करने वाली हूँ. सो आई वॉज थिंकिंग कि भाई ये जो आजकल रिव्यूज पता चल जाते हैं ना, ये बड़े काम आते हैं. सो अर्शद वारसी का वो कौन सा कैरेक्टर है जिसे आप कभी भूल नहीं सकते, सर्किट वाला या फिर कोई और? सो नाम भेज के जरूर बताइएगा उस कैरेक्टर का नाम. नंबर इज 3311063 एंड यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ. मैं हूं मुस्कान. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: Olive Sono Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.

0: So, कभी कभी आपने नोटिस किया है कि दो लोग सेम तरह का जोक सुनाते हैं, एक पर पूरा रूम जो है वो चुप रहता है, मतलब कोई हंसी ठाक ही नहीं, और दूसरा जब वही जोक सुनाता है तो एक सेकंड रुकता है और आईब्रो रेज करता है और पूरा रूम जो है वो हंसने लगता है। ये मैजिक क्या है? दिस इज टाइमिंग एक्चुअली। बॉलीवुड में कुछ एक्टर्स के पास ये गिफ्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल पर है। जॉनी लीवर हो गए, परेश रावल, राजपाल सिंह, मतलब राजपाल यादव या फिर अर्शद वारसी। सो ऐसे कुछ एक्टर्स हैं जो एक्चुअली इतनी सही टाइमिंग पर जोक सुनाते हैं कि हर कोई हंसने लगता है। सुन रहे हैं आप रेडियो 106.3 FM, दिस इज मी मुस्कान विद यू, और शो का नाम है लाइफ मस्त है। और कभी कभी ना एक्टर को फनी होने के लिए डायलॉग की जरूरत नहीं होती। परेश रावल का एक एक्सप्रेशन काफी है, जॉनी लीवर का एक पॉज काफी है, राजपाल यादव का वो पैनिक होना और ऑडियंस ऑलरेडी गॉन हो जाती है। एक्चुअली कॉमेडी का एक ना इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है एक्सपेक्टेशन और सरप्राइज। आपको लगता है कि कैरेक्टर कुछ बोलेगा लेकिन वो कुछ और कर देता है, या डायलॉग से पहले ही एक पॉज आ जाता है और वही टाइनी गैप जो है वो लाफ क्रिएट करता है। इसीलिए गुड कॉमेडी सिर्फ फनी लाइंस लिखने का नाम नहीं होती, इट्स नोइंग एग्जैक्टली व्हेन नॉट टू स्पीक। अब आपका वोट चाहिए मुझे कि बॉलीवुड का सबसे नेचुरल कॉमिक एक्टर आपके लिए कौन है। फॉर मी यू नो आई हैव लॉट ऑफ नेम्स, लेकिन अगर मैं अपने घर पे बात करूं, मतलब मैं अपने अगर मम्मी पापा से पूछती हूँ तो उनको जॉनी लीवर बहुत पसंद है, मतलब वो शायद उनके टाइम से उन्होंने देखा है और उतना फन यू नो इन्जॉय किया है। सो यू टेल मी कि आपका फेवरेट जो कॉमेडियन है वो कॉमिक एक्टर कौन है। 3311063 इज माई व्हाट्सएप नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

सो लेट्स डू वन एक्सपेरिमेंट. आपको ना सिर्फ 15 मिनट के लिए कुछ नहीं करना है, फोन नहीं चलाना, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कोई OTT प्लेटफॉर्म पर स्क्रॉल नहीं करना. बस आप कितने लोग अभी ही अनकंफर्टेबल फील करने लग गए होंगे, मतलब ये सुनते ही कि बिना फोन के रहना है, कुछ करना नहीं है. हमारा ब्रेन ना बोर्डम को टॉलरेट करने में इंक्रीजिंगली इम्पेशेंट हो गया है. आई फील कि मतलब लिफ्ट में 20 सेकेंड मिलते होंगे हमको, यू नो, अपने नीचे से लेके अपने फ्लोर तक जाने के लिए. फोन, ट्रैफिक सिग्नल, फोन, जब भी आपको लगता है कि यार लिफ्ट में बोर हो रहा है, फोन उठा लेते हैं. जैसे ही हम कहीं किसी के साथ बैठे होते हैं और जैसे ही टॉपिक्स कुछ ऐसे हो जाते हैं जो हमारे मतलब के नहीं होते. सो फोन में कुछ नया है नहीं, बस फिर भी इंस्टाग्राम खोलो, स्क्रॉल करो, क्लोज करो और 30 सेकंड बाद फिर खोलो. लेकिन बोर्डम को हमेशा ना एनिमी समझना भी मतलब इंटरेस्टिंग नहीं है. सो जब ब्रेन को ना हर सेकेंड एक्सटर्नल स्टिमुलेशन नहीं मिलती तो दिमाग जो है वो मतलब ऐसे ही काम करता है. और दिमाग कभी कभी ना क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूजफुल स्पेस क्रिएट कर देता है. सो सैटरडे को एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिएगा. जब भी आपको ऐसा लगे कि यार मैं बहुत थक गई हूँ या थक गया हूँ, तो 15 मिनट के लिए बोर्डम को फील कीजिएगा. विंडो से बाहर देखिए, चाय पीजिए, वॉक कीजिए, बस कुछ मत फील कीजिए. और उसको ना भरिए मत, मतलब उस 15 मिनट में खाली रखिए. हो सकता है कि उस साइलेंस में आपको कोई थॉट हो जाए, तो मतलब नोटिफिकेशन के शोर में आप वो सोच नहीं पाते हो. और फिर आप मुझे व्हाट्सएप करके बताना कि आपको 15 मिनट कैसे लगे. 3311063 इज माई नंबर. मैं हूं मुस्कान और ये है लाइफ मस्त है.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पास

0: यार अभी जो गाना चल रहा था थोड़ी देर पहले, आई वॉज वंडरिंग कि वो गाना मुझे मेरे घर तक लेकर गया था। अब आप कहोगे कि गाना घर तक कैसे लेके जा सकता है, बताती हूँ आपको। सो आपने भी कभी कई बार ऐसे गाने सुने होंगे जो बिना किसी वार्निंग के आपको सीधे घर ले जाते हैं, कोई एक पुराना हिंदी गाना, कोई कॉलेज का गाना, और सडनली आपको याद आता है वो कमरा, वो दोस्त, वो रोड, वो एक पर्टिकुलर इवनिंग। म्यूजिक की सबसे खास क्वालिटी शायद यही है कि वो याद को सिर्फ याद नहीं दिलाता, हमेशा ना एक प्लेस नहीं होता। कभी कभी मुझे लगता है कि घर जो है एक आवाज़ होती है, एक स्मेल होती है, एक लैंग्वेज होती है, एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है घर। मुझे ऐसा लगता है कि देखो घर जाने के लिए तो साल भर का इंतजार करना पड़ता है हम सबको, या फिर ऑफकोर्स 6-8 महीने तो लगते ही हैं। आप दुनिया के किसी भी कॉर्नर में हो, एक फैमिलियर ट्यून बजती है और अंदर से आप कहते हो कि हाँ ये तो मेरा गाना है। सो यू टेल मी, रेडियो ऑलिव पर मुझे बताइए कौन सा गाना आपको इंस्टेंटली घर की याद दिला देता है। 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून, जियो बिंदास।
1: रेडियो

सो टुडे इज 5th of September, टीचर्स डे। और अगर आज मैं आपसे पूछूं कि आपके फेवरेट टीचर कौन थे, तो शायद आप बहुत लोगों का नाम याद आ जाएगा। कोई मैथ्स के टीचर, कोई इंग्लिश टीचर, कोई वो स्ट्रिक्ट टीचर जिसने पूरा क्लास को डरा के रखा हुआ था, और कोई ऐसे जिनकी क्लास का इंतजार हर कोई करता था। हर तरह के टीचर्स होते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद ना एक बात समझ आई, हमारी जिंदगी के सारे टीचर्स क्लासरूम में नहीं मिलते। किसी ने हमें पहली बार हारना सिखाया, किसी ने सिखाया कि लोगों पर भरोसा कैसे करना है, और समटाइम्स किसी ने शायद हमारा दिल तोड़ा और उसी से हमने अपनी बाउंड्रीज सीख ली। किसी दोस्त ने सिखाया कि मुश्किल टाइम में कौन अपना होता है, और कौन कभी कभी ना हमारी सबसे बड़ी टीचर हमारी अपनी गलती होती है। सो फॉर वी इंडियंस, टीचर्स डे इज फॉर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी। बट जब उनके स्टूडेंट्स उनका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि उसे ना मतलब उनका बर्थडे मनाने की बजाय टीचर्स डे के रूप में मनाया जाए। और मुझे लगता है इसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल बात छुपी है, नॉलेज देने वाला हर इंसान टीचर है, कभी क्लासरूम में, कभी ज़िंदगी में। तो आज अगर कोई एक इंसान है जिसने आपको कुछ ऐसा सिखाया है जिसे आप आज भी अपने साथ लेकर चलते हो, तो उन्हें मैसेज ज़रूर कर देना, बस एक लाइन की, यू टॉट मी समथिंग आई विल नेवर फॉरगॉट। और मुझे ऐसा लगता है कि यही बेस्ट चीज़ है यार, मतलब ऐसे मतलब डेट्स पे आप किसी को याद कर सकते हो। और आपकी लाइफ का वो टीचर कौन है जो क्लासरूम में कभी था ही नहीं, नाम बताना मुझे जरूर। रेडियो ऑलिस सुन रहे हैं आप, नंबर है 3311063। मुस्कान है आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: सो आपके फोन में ना हजारों फोटोग्राफ्स होंगी, मतलब डिपेंड करता है कि आपके फोन की मेमोरी के हिसाब से कितनी यू नो आपने मेमोरी खरीदी, 64 GB, 128 GB, और उसमें ज्यादातर सिर्फ पिक्चर्स ही हैं, बाकी सब मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ एक फोटो रख सकते हो आप और बाकी सब डिलीट कर सकते हो. सो द फनी थिंग इज कि शायद आपकी फेवरेट फोटो टेक्निकली परफेक्ट नहीं होगी, किसी की आंख बंद होगी, किसी बैकग्राउंड में आप देखोगे कि बहुत कुछ मैसी है, फोटो ब्लर है, लेकिन उसमें कोई ऐसा इंसान है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको लगता है कि नहीं यार ये फोटो ना रखनी चाहिए. फोटोग्राफ का ब्यूटी यही है कि कैमरा एक सेकंड कैप्चर करता है, लेकिन हम यू नो उस सेकंड के पीछे पूरी कहानी देख लेते हैं. सो आई वाज वंडरिंग कि दोहा में आज सैटरडे से फ्रेम एंड फोकस एग्जीबिशन स्टार्ट हो रही है, जहां इमर्जिंग फोटोग्राफ्स और यू नो बहुत सारे फोटोग्राफर्स आइडेंटिटी, मेमोरी, बिलोंगिंग्स और हेरिटेज जैसे थीम्स के फोटोग्राफ्स के थ्रू एक्सप्लोर कर रहे हैं. और मुझे लगता है कि हर फोटोग्राफ ना एक्चुअली एक इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है. कैमरा कहता है कि दिस हैपेंड और व्यूअर का माइंड पूछता है कि बट व्हाट हैपेंड बिफोर दिस एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर. सो आज पूरा कैमरा रोल खोलिए, एक फोटो देखिए और मुझे व्हाट्सएप करके बताइए अगर आपको सिर्फ एक फोटोग्राफ ऐसी लगती है कि यार ये तो मैं हर नए फोन में इसको ट्रांसफर करके और इसे अपने पास ही रखने वाला हूँ. सो टेल मी, 3311063 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग.

0: Listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: From vacation in your hometown, तो routine start करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं. अब कतर में shopping करें best prices पर. सिर्फ Nesto Hypermarket में. Groceries हो, fresh food हो या daily essentials, सब कुछ एक ही जगह amazing prices पर. तो अपनी shopping को बनाए और भी profitable. Nesto Hypermarket, 152nd branch now open in Old Passport Office,

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद

सो हम इंडियंस ना पैसे को लेकर एक अजीब रिलेशनशिप रखते हैं. सैलरी पूछना मतलब ऑकवर्ड हो जाता है, सैलरी और सेविंग्स की बात करना मतलब ऐसे लेक्चर्स हो जाता है, और शॉपिंग करनी है तो अरे यार लाइफ एक ही है, बार बार नहीं मिलती और हम बस शॉपिंग की बातें करने लग जाते हैं, और मंथ एंड आते ही अगले महीने बेटर मैनेज करेंगे वाला दिमाग में चलने लगता है. लेकिन मनी एक्चुअली सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं है, मनी इज़ इमोशन, सिक्योरिटी, फ्रीडम, फियर. कभी किसी के पास ना अच्छी सैलरी होती है लेकिन हर महीने स्ट्रेस होता है, और कभी इनकम मॉडेस्ट होती है लेकिन पर्सन को पता होता है कि कितना आ रहा है, कितना जा रहा है और फ्यूचर के लिए क्या बचा कर रखना है. सो आई वॉज थिंकिंग कि ऐसे ही ना इतने सारे सेशंस हैं जो कतर में और ऑनलाइन डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर चल रहे हैं, और इस वीकेंड यू कैन ऑल्सो लर्न समथिंग. कतर नेशनल लाइब्रेरी में स्मार्ट मनी बिल्ड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हैबिट सेशन भी चल रहा है, जिसमें सेविंग्स और इन्वेस्टिंग जैसे टॉपिक्स पर बात करती मतलब होती है. एंड आई वॉज थिंकिंग कि यार आजकल तो ऑनलाइन भी कितनी सारी चीज़ें, पर हाँ ऑनलाइन जो भी है, जितने भी ये जो फाइनेंस के ऊपर बात करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ सच बताएं. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको रिसर्च करनी पड़ती है. सो सवाल ये है कि आप अपने पैसे को कैसे कंट्रोल करते हो, कमाते क्या हो, ये सवाल है ही नहीं. सो आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है? ज़्यादा पैसा, लेस डेट, या फिर सेविंग्स, या सिंपली मंथ के लास्ट वीक में बैंक बैलेंस देखकर हार्ट अटैक ना आ जाना. सो यू टेल मी. 3311063 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक.
1: अरमान मलिक
0: 106.3 FM रेडियो ओलिव जियो बिंदास.
2: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: और धीरे धीरे ऐसे ही भाई मेरे जाने का वक्त हो गया। देखो सैटरडे है और वीकेंड जो है वो धीरे धीरे पैक हो रहा है, कल संडे होगा और उसके बाद आपका वर्क वीक मतलब सुबह सुबह स्टार्ट हो जाएगा। और हमारी एक ही आदत है कि वीकेंड खत्म होने से पहले ही संडे स्टार्ट कर देते हैं हम। सैटरडे नाइट को यही बोलते हैं कि कल क्या खाना बनाना है, कैसे जाना है, कितने बजे उठना है, कौन कौन से काम है, पूरी लिस्ट रेडी होती है, क्या पहनना है, किसको कौन से मेल्स हैं जो पेंडिंग है, अलार्म कितने बजे का लगाना है। और सडनली सैटरडे भी गया, संडे सुबह और ये सब थॉट्स जो है वो आने लगते हैं और हम उसकी टेंशन लेने लगते हैं। सो आज रात को एक छोटा सा रीसेट कीजिए कि संडे के लिए सिर्फ एक काम रखिए, बाकी आज के दिन को आज ही रहने दीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि पिछले वीक को जज करने की बजाय तीन छोटी चीज़ें हैं जो आप याद कर सकते हैं, कोई काम कंप्लीट हुआ, किसी ने आपको स्माइल दी, या आपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, अपने खुद के लिए कुछ किया। बिकॉज एवरी वीक एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हो सकता, कुछ वीक्स ना बहुत ही चुपचाप ऐसे निकल जाते हैं। सो लाइफ हर वीक इंस्टाग्राम वर्दी नहीं हो सकती। कभी कभी सक्सेसफुल वीक का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपने उसे पूरा किया और अब आई विल से कि मेरे जाने का टाइम हो गया है। बचे हुए सैटरडे को अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। सुनते रहिए रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। फॉर मी आई हैव टू से कि कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह पर सुबह 10 बजे लाइफ मस्त है लेकर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो ऑलिव पर song of the hour. Yeah, guys.

0: कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क। रेडियो ऑलिव नंबर वन। ऑलिव म्यूजिक मैराथन एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक गाने।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3।

0: फ्रॉम वेकेशन इन योर होम टाउन, तो रूटीन स्टार्ट करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट प्राइसेस पर, सिर्फ नेस्टो हाइपरमार्केट में। ग्रोसरीज हो, फ्रेश फूड हो या डेली एसेंशियल्स, सब कुछ एक ही जगह अमेजिंग प्राइसेस पर। तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी प्रॉफिटेबल। नेस्टो हाइपरमार्केट, 152nd ब्रांच नाउ ओपन इन ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस अलगराफा।
1: Olive Music Marathon. 1 ghanta. 1 ghanta. Non-stop back to back.

आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वैग के साथ स्वागत है। यह है रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, और बांध रखी है तो और कस के बांध लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम गाने सुनाने वाले हैं, गुनगुनाने वाले हैं, ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं ऑलिव रिचार्ज को, और कहते हैं जियो बिंदास।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और मुझे रिसेंटली तनीषा ने एक रील भेजा जिसमें लिखा था कि जो लोग बैठे बैठे कहीं भी सो जाते हैं वो सही में बहुत खुशकिस्मत होते हैं करके। तो मेरे अंदर की क्यूरियोसिटी जगी, क्या सही में ऐसा होता है, वो लोग खुशकिस्मत होते हैं या फिर और भी कुछ रीजंस हैं। तो मैंने इसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला जो लोग जो कहीं भी बैठे बैठे सो जाते हैं वो इसलिए सो पाते हैं क्योंकि या तो उनकी नींद पूरी नहीं हुई होती, यानी कि रात को 7 या 8 घंटे की प्रॉपर नींद नहीं मिली होगी, या फिर मोनोटोनस सा एनवायरमेंट होगा जब दिमाग को कोई एक्टिव स्टिमुलस नहीं मिलता, जैसे ट्रैवल करते वक्त या फिर लंबी मीटिंग में या फिर टीवी देखते हुए, तो ब्रेन जो है रिलैक्स मोड में चला जाता है और नींद आ जाती है। भारी खाना खाना, कार्बोहाइड्रेट या हैवी मील खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल और डाइजेशन की वजह से बॉडी जो है लिथार्जिक हो जाती है और हमें नींद आ जाती है। फिर होता है सर्कैडियन रिदम का ड्रॉप होना। तो हमारे बॉडी के बॉडी क्लॉक के हिसाब से 2 बार हमें नींद आती है, एक तो रात को और दूसरा दोपहर को 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में। इस बीच में अगर आपको नींद आती है, अगर आपकी नींद पूरी हुई है, खाना आपने ढंग से खाया है, फिर भी आपको नींद आती है, तो इट्स बिकॉज ऑफ दिस थिंग। और मैं यही बोलना चाहूंगा कि सारे कंपनीज में जो है एक 20 मिनट का नैप सेशन होना जरूर चाहिए ताकि लोग भी थोड़ा रिफ्रेश्ड महसूस करें। अब इसके कुछ मेडिकल रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे कि स्लीप अपनिया होता है, रात को नींद के दौरान सांस का बार बार रुकना, या फिर नार्कोलेप्सी करके एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसमें दिमाग स्लीप वेक साइकिल्स को रेगुलेट नहीं कर पाता, या फिर कुछ डिफिशेंसीज हो सकती हैं। बट अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो ये प्रॉबेबली 2 चीज़ों की वजह से होती हैं, एक बहुत ज़्यादा खाना खाना और दूसरा बॉडी का जो नॉर्मल क्लॉक है वो। तो यही चीज़ें मेरे हिसाब से हैं। बट अगर आपको दोपहर के टाइम पे नींद आती है और बहुत बार आ रही है और आपका स्लीप साइकिल ठीक नहीं है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा अपने स्लीप साइकिल पे वर्क कीजिए, अपने डाइट पे थोड़ा काम कीजिए। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है
3: कूल सॉन्ग। ओ प्रिया, जब जब तू मेरे सामने आती है मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगती है। तू मेरा प्यार, मेरी पूजा, मेरी जिंदगी है। आ देख, देख तू मेरा पागलपन, कि मैं हर चेहरे में तेरा चेहरा तलाश करता हूं। ये मुझे क्या हो गया है, क्या कहूं, बस तुझे छूने को दिल करे, तुझे पाने को दिल करे।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ठीक है? क्या आपके लाइफ में एक ऐसा दोस्त है जिसे आप कुछ भी बोल सकते हो, अपने कोई भी मूड के बारे में बात कर सकते हो, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में बात कर सकते हो, वो बिल्कुल अच्छे से आपको सुनेगा, जब आप बोलोगे आपको अच्छे एडवाइसेस भी देगा? अगर ऐसा एक दोस्त आपकी लाइफ में है तो आप बहुत अपने आप को लकी कंसिडर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लाइफ में ऐसा कोई होता नहीं है जो उन्हें सुने अच्छे से, जो समझे उन्हें अच्छे से। सुनने वाले फिर भी मिल जाएंगे शायद, मगर समझने वाले बहुत कम मिलते हैं। तो अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई है तो उनको जरूर आज एक मैसेज करना, थैंक यू बोलना, और यही बोलते हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे अभी जैसे कि स्कूल वूल में जाने का माहौल जो है शुरू हो चुका है, बच्चे वापस स्कूल की ओर बढ़ रहे हैं, तो मेरे मन में एक याद जो है ऐसे एकदम दौड़कर वापस आई। तो स्कूल जाते वक्त सबसे मेन काम होता है बस्ता जमाना करके, ठीक है, टाइम टेबल के हिसाब से बस्ता जमाना, ये सब करना मुझे बचपन से पसंद नहीं था, टाइम टेबल देखना, ये करना वो करना। तो मैं सारी किताबें ले जाता था, इसलिए मेरा बैग जो था वो बहुत भारी होता था, बहुत ज़्यादा भारी होता था। तो लोग मुझसे पूछते थे कि ये भारी बैग क्यों लेकर आता, तो मैं कहता था ये एक्सरसाइज है भाई, एक्सरसाइज करके। बट यही मैं जब कॉलेज में पहुंचा तो किताब ले जाना ही छोड़ दिया मैंने। फाइनल ईयर में तो सीधा खाली हाथ सिर्फ एक पेन लेकर जाता था, स्टाफ रूम में जाके निकालता था मैं एक रिकॉर्ड, वो भी किसी सीनियर का, और क्लास में चले जाता था। तो ये स्टार्क डिफरेंसेस जो हुए हमारे बचपन के बस्ता जमाने के एक आदत को देखे और कॉलेज की आदत को देखे, तो बहुत बड़ा अंतर हमें दिखाई देता है। आप भी अगर इस बात से सहमत है तो जरा मुझे मैसेज कीजिए 3311063 पर, और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो

0: दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुदेव रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhol.
2: हेलो नमस्कार, मम्मा मिया, मैं हूँ चंकी पांडे और आप सुन रहे हो मुझे रेडियो ओलिव

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और आज इंडिया में टीचर्स डे मनाया जाता है, और मैं अपने टीचर्स के बारे में कुछ बात यहां पे बोलना चाहूंगा, स्पेशली कॉलेज में जो मेरे टीचर्स थे। तो हमारा बैच बहुत यूनिक था इस मामले में, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में, हमारे टीचर्स ने हमारे जूनियर्स को, हमारे सीनियर्स को, दोनों को डांट लगाई है, दोनों के साथ काफ़ी क्या कहते हैं डिसिप्लिन तरीके से जो है व्यवहार जो है अपना रखा है, मगर हमारे साथ काफ़ी अलग, हमारे साथ टीचर्स से ज़्यादा दोस्ती बन गई थी उनकी। हम उन्हें मूवीज़ देते थे, डाउनलोड करके लेकर आके देते थे, बहुत बढ़िया बातचीत। सोच सकते हो स्टाफ रूम में पूरे दिन, मतलब सरेआम कोई सो सकता है क्या? मैं कर चुका हूँ, वो भी टीचर के डेस्क में बैठ के सोया हूँ मैं। अगर आप मुझसे पूछो कि आर यू प्राउड ऑफ इट, आई डोंट नो, बट हाँ ये सारी चीज़ें हुई हैं क्योंकि उनके साथ हमारा रिश्ता काफ़ी अच्छा था। और वो रिश्ता अच्छा क्यों हुआ? वो रिश्ता अच्छा इसलिए हुआ क्योंकि हम उनकी बात मानते थे, उनको इज्जत देते थे, उनकी रिस्पेक्ट करते थे, इन सबसे ज़्यादा उनको बहुत प्यार देते थे। और इसलिए हम हमेशा उस पूरे कॉलेज की हिस्ट्री में अगर देखें काफ़ी स्पेशल रहे हैं। और यही बात बताते हुए, अपने टीचर्स को रेस्पेक्ट करना मत भूलना याद दिलाते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

आप सभी का फिर से एक और बार इस्तकबाल है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। अगर आप चाहते हो आपके ऑफिस में रेडियो ऑलिव की टीम आए, फन करे, एंजॉय करे, आपको एंटरटेन करे, उसके साथ साथ रिचार्ज और रीएनर्जाइज करे, तो सीधा हमें मैसेज भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 3311063 पर, HL स्पेस आपके कंपनी का नाम। ठीक है, ये है हैप्पीनेस लॉन्च, जहां पे रेडियो ऑलिव की टीम जो है आपके ऑफिस पर आएगी, बहुत बढ़िया तरीके से चिल करेगी, एंजॉय करेगी, बहुत ही बढ़िया मेमोरीज बनाएगी, साथ ही साथ आपको एंटरटेन भी करेगी। तो यही बात याद दिलाते हुए बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

0: हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुदेव, रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और आज एक्सीडेंटल इन्वेंशंस में हम एक इवनिंग वॉक के बारे में बात करेंगे जो एक बहुत ही बढ़िया इन्वेंशन की ओर जाके पहुंचा। तो बात कर रहा हूं मैं जॉर्ज डिमेसल के बारे में, जो एक स्विस इंजीनियर थे। 1948 में एक शाम को ये अपने पेट के साथ जो है एक इवनिंग वॉक के लिए निकले, और जब वापस आए तो उन्होंने देखा उनके कपड़ों पर और उनके पेट के ऊपर जो है बर्डॉक प्लांट के बर लगे हुए थे। जब इन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे रखे इस चीज़ को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि बर्ज में जो है टाइनी हुक्स लगे हुए थे जो कपड़ों पर और उनके पेट के फर पर जो है काफ़ी टाइटली क्लंग करके बैठे हुए थे। इसी चीज़ ने उन्हें इंस्पायर किया एक हुक एंड लूप फास्टनर फैब्रिक की ओर, और वही है वेलक्रो। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: From vacation in your hometown, तो routine start करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट prices पर सिर्फ Nesto Hypermarket में groceries हो fresh food हो या daily essentials सब कुछ एक ही जगह amazing prices पर तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी profitable Nesto Hypermarket 152nd branch now open in old passport office Algarafa
2: Nesto all that you need। मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो अलविदा।

0: टेप रिकॉर्डर था, उसे सुबह सुबह छुट्टियों के दिन खोल के उसमें बॉर्डर का कैसेट में डालता था, गाने सुनता था। और भी बहुत सारे कैसेट्स थे, बहुत मूवीज़ के कैसेट्स थे, गानों के कैसेट्स थे, तो काफ़ी अच्छा लगता था। मतलब एक अलग ही एक फील आती थी उनमें। आजकल के ज़माने में अब देखिए स्पॉटिफाई आ चुका है, यूट्यूब म्यूज़िक है, Gaana.com है, सारेगामा ये है, सारी चीज़ें हैं, मगर कैसेट की जो फील है वो शायद ही ये इनमें से कोई दे सकता है। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो सीधा जाइए इंस्टाग्राम पे radioolive.qa सर्च कीजिए, फॉलो बटन वहां दिख रहा है तो एक बार दबाइए, हमारे पोस्ट को चेकआउट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमें सुनते हुए एक स्टोरी बना के इंस्टाग्राम पर डालिए, हमें टैग कीजिए, हम उस स्टोरी को रीशेयर करेंगे। और सबसे बढ़िया बात यह है कि हमारे इंस्टाग्राम पेज पर बहुत सारे डिजिटल कॉन्टेस्ट आते हैं, तो आपके पास गिफ्ट जीतने के भी मौके हैं। तो जानी इंतजार किस बात का है, फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: Ready?
1: Ready!
0: To learn!
1: Yes!
0: To play!
1: Absolutely!
0: To grow!
1: With Maserati!
2: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मैसराटी फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
1: मिल्क चीज योगर्ट लवली एग्स
2: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मैसराटी है आपकी पूरी फैमिली के लिए

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

0: तो भाई धीरे धीरे टाटा बाबा गुड बाय करके निकलने का वक्त आ चुका है, 5 बजने वाले हैं, पार्टी अभी बाकी है, जबरदस्त इवनिंग्स के लिए तैयार हो जाइए। और यही बोलते हुए हम भी जरा निकलते हैं, मगर जाने से पहले आपसे यही दरख्वास्त है कि आप अपना ख्याल रखना, अपने खास लोगों का ख्याल रखना और हमें जरा दुआओं में याद रखना। फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, खिलखिलाते रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर Song of the Year.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास
1: जब मिल सकता है और भी ज्यादा तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
2: अपने हाला नंबर पर पाइए ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर
1: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से
2: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिलें
1: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू

सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.

अब देखिए जिस तरीके से शाहरुख और रोमांस का एक नाता है, जिस तरीके से मौसम और गर्मी का एक नाता है, बिल्कुल उसी तरीके से सैटरडे और आलस का भी बहुत गहरा नाता है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल पर, मैं हूँ आपकी कशिश अंशु, आपके लिए जबरदस्त इवनिंग लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी बेसिक बोरिंग इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखी है। अब देखिए यार क्या होता है ना कि अब कुछ चीज़ें मुझे आए या ना आए, जैसे मुझे जो है लेफ्ट हैंड से आज तक लिखना नहीं आया, मुझे जो है परफेक्ट गोल रोटी बनानी नहीं आई, ऐसे ही मुझे जो है अभी तक ये नहीं आ पाया है कि सैटरडे में फुल एनर्जी से काम कैसे किया जाता है। बिकॉज आप अभी अभी वीकेंड से बाहर निकले हो एंड आप बाकी लोगों को देख रहे हो उनकी छुट्टी इंजॉय करते हुए, लेकिन आपको ऑफिस में काम करना है। सो आप किस तरीके से वाइब में रहो, किस तरह खुश रहो, वो तो देखो ये अच्छी बात है कि मेरा जो काम है वो मेरी ड्रीम जॉब है। आप लोगों से बातचीत करना मुझे हमेशा से पसंद है, इसीलिए मैं अपना काम कर पा रही हूँ। अगर मेरी कोई डेस्क जॉब होती फिर तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाती, फिर तो डेस्क होती और होते मेरे खर्राटे। फिलहाल देखिए हर बात को जो है साइड में हटाते हैं, मैं भी अपनी एनर्जी का लेवल बढ़ाती हूँ, आप भी अपने म्यूजिक का लेवल बढ़ाइए एंड अमेजिंग वाले जो गाने हैं वो एंजॉय कीजिए फुल वॉल्यूम में। मैं हूँ आपकी कशिश, एंजॉय करते रहिए एंड जबरदस्त इवनिंग में बहुत अमेजिंग गाने, बहुत अमेजिंग बातचीत जो है वो हम जारी रखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड रहिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: जब मिल सकता है और भी ज्यादा तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
2: अपने हाला नंबर पर पाइए ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर,
1: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से।
2: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिलें।
1: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
3: Hi everyone, this is Benny Deol here.
4: Benny Deol here.
3: Olive Radio 106.3.
4: Jiyo Bindas.
5: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian Radio Network.
6: Radio Olive, I'm number one.
7: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास
8: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
9: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
10: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: वैसे तो मैं खुद एक जेंजी हूँ, लेकिन कई बार मुझे जेंजी भाषा जो है, मतलब जेंजीज की जो भाषा है, जो स्लैंग्स है, वो समझ नहीं आते। लेकिन एक चीज है जो बहुत अच्छी लगती है, जो हर चीज के आगे ING लगा देते हैं ना, हेयरिंग, केयरिंग और मतलब डेयरिंग, मतलब ऐसा कुछ। अभी समझाती हूँ, अभी आपको नहीं आ रहा होगा समझ। पहले तो वेलकम है आपका 106.3 रेडियो ऑलिव पर। मैं हूँ आपकी कशिश अंशु, आपके लिए जबरदस्त इवनिंग लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी बेसिक बोरिंग इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखी है। अब मैं बात कर रही थी, जैसे कहते हैं ना कि टुडे हेयर इज नॉट हेयरिंग, मूड इज नॉट मूडिंग, वर्क इज नॉट वर्किंग, तो वैसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा है। लेकिन एक चीज है जो बिल्कुल ING नहीं कर रही है, एंड वो है मौसम। सो मौसम इज नॉट एट ऑल मौसमिंग। 38 डिग्री सेल्सियस जो है आज का मैक्सिमम टेम्परेचर था, लोएस्ट टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। एंड या देखो 36 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन फिर भी गर्माहट तो महसूस हो रही है। थोड़ी सी देर में देखो सनसेट हो जाएगा, एंड सन ने मुझे पता है ढलना जो है वो शुरू कर दिया है, तो इसीलिए बस आप अपनी कैमरा निकालिए, मतलब फ़ोन का कैमरा निकालिए। एंड अगर आप सिग्नल पर रुके हुए हैं या कहीं पर पार्क कर रहे हैं गाड़ी और रुके हुए हैं बेसिकली, तो मुझे एक सनसेट की प्यारी सी फोटो अगर आप भेज देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लग जाएगा। क्योंकि क्या है ना कि इस बिना खिड़की वाले स्टूडियो में मूड इज नॉट मूडिंग। सो 3311063 इज द नंबर, जल्दी से फोन उठाइए, मुझे प्यारी सी एक फोटो मौसम की भेज दीजिए। और बाकी आपकी कशिश के साथ स्टे ट्यून रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास, अमेजिंग गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम
1: बिंदास रेडी टू लर्न टू प्ले टू ग्रो
2: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मैसूराटी फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
3: मिल्क चीज योगर्ट लवली
2: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस
4: बातें नहीं एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर जियो बिंदास
5: Zabardast evening. Make your drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop. Just

यार इतनी बात तो मेरे घर पे मेरा छोटा भाई मेरी नहीं मानता जितनी आप लोग मानते हो। मतलब आप लोग मेरा दिल, मेरी बात सब रख लेते हो। कितना अच्छा लगता है पता है मुझे, मेरे आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपकी लिए लेकर आ गई जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बेसिक बोरिंग इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब देखो यार, मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आने के बाद बहुत सारा फन कॉन्टेंट जो है वो मैं आपसे शेयर करूँगी, लेकिन उससे पहले आप लोग मुझे जो है कुछ फोटोज भेजिए कि सनसेट हो रहा है, कैसा लग रहा है बाहर, माहौल कैसा है, मौसम कैसा है। अब देखिए इतने सारे लोगों ने एक साथ फोटोज भेज दिए हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो लैग करने लग गया है। फिर भी कुछ लोगों की जिनकी सबसे पहले मैं फोटोज देख पाई थी, मैसेजेस अभी भी आ रहे हैं, आप लोगों की फोटोज अभी तक मुझ तक पहुंच रही है। लेकिन चित्रा जी ने सबसे पहले जो है मुझे एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा कॉर्निश का फोटो आई थिंक वो भेजा है, एंड थैंक यू सो मच चित्रा जी, बहुत अमेजिंग फोटोग्राफी है आपकी। उसके बाद सुलेमान जी ने जो है ये मुझे सिग्नल का फोटो भेजा है, वो सिग्नल पे रुके हैं, उन्होंने मेरे लिए वक्त निकाल के अपना फोन निकाल के फोटो खींची। बाकी बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस दिख रहे हैं लेकिन उनके नाम मुझे नहीं दिख पा रहे। सो अगर आप वो है जिन्होंने मुझे फोटो भेजी है तो थैंक यू सो मच एंड आई अप्रिशिएट आप लोगों का एफर्ट। जैसे ही अगर ये मुझे नाम दिखने शुरू हो जाएंगे तो मैं आप लोगों के नाम जो है वो ऑन एयर ले लूंगी। थैंक यू सो मच पर मुझे बाहर का नजारा दिखाने के लिए थैंक यू सो मच। फिलहाल इसके बदले में एक बहुत ही प्यारा गाना जो है वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। सो वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय करो आपकी कशिश के साथ और कहते रहो जियो बिंदास।

0: back from vacation in your hometown, तो routine start करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब कतर में shopping करें best prices पर, सिर्फ Nesto Hypermarket में। Groceries हो, fresh food हो या daily essentials, सब कुछ एक ही जगह amazing prices पर। तो अपनी shopping को बनाएं और भी profitable। Nesto Hypermarket, 152nd branch now open in Old Passport Office, Algarafa.
1: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर जियो बिंदास
2: Zabardast evening. Make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

लोग ना अलग अलग जगहों पर खो जाते हैं, मतलब वो किसी क्राउडेड मार्केट में खो सकते हैं, मॉल में खो सकते हैं, शहर के बीचों बीच खो सकते हैं, घर में भी खो जाते हैं, लोगों की आंखों में खो जाते हैं, लेकिन मैं खो जाती हूँ शॉपिंग में। यस, बिल्कुल सही। और अगर आप भी मेरी तरह है तो जरा वॉल्यूम बढ़ाकर इंजॉय कीजिए। गुड इवनिंग 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूँ आपकी कंसेशन शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बेसिक बोरिंग इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखी है। अब देखो, कल जो है मुझे थोड़ा सा वक्त मिला तो मैं ना शॉपिंग करने के लिए चली गई, एंड मैं शॉपिंग करते करते इतना खो गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि रात के 9:30 बजे कब बज गए। मतलब मैं 6 बजे गई थी एंड 9:30 जो है कब बजा कैसे बजा मुझे कुछ समझ नहीं आया। एंड जो मेरे साथ गए हुए थे लोग, वो लोग सच में थक गए थे, उनकी आंखों में उनकी शक्ल पे दिख रहा था कि वो इतने एग्जॉस्ट हो गए। लेकिन उन्होंने जब मुझे कहा ना कि कशिश चले अब, मैंने बोला यार अभी तो आया, अभी तो कुछ शॉपिंग की भी नहीं, तो बोलते 9:30 बज गए। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं शॉपिंग में इतना ज्यादा खो गई कि मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। अब देखो, बस इधर से उधर घूमते हुए ये ड्रेस अच्छी नहीं लग रही, इसका कलर अच्छा नहीं, इसकी स्लीव्स अच्छी नहीं है, ये कहते हुए मैंने अपना पूरा फ्राइडे निकाल दिया। अब आपने अपना फ्राइडे कैसे जो है वो गुजारा ये मुझे बताइए 3311063 पर। बाकी कल के बारे में डिटेल में डिस्कशन जो है थोड़ी देर बाद करेंगे। स्टे ट्यून्ड आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जी ओपन दास।

बचपन से हमें सिखाया जाता था ना कि ये कलर इस चीज के साथ नहीं पहना जाता क्योंकि ये मैच नहीं करते, या सिल्वर डिटेलिंग वाली अगर आपने ड्रेस पहनी है तो उसके साथ गोल्डन झुमके नहीं चल सकते। लेकिन इस हर तरीके के रूल को जो है जेन ज़ी इस वक्त चैलेंज कर रहे हैं एंड कुछ अलग अलग लेवल पे जाके चैलेंज कर रहे हैं। वेलकम जी, गुड इवनिंग 106.3 रेडियो ऑलिफ पर मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ मैं जबरदस्त इवनिंग जहाँ पर आपकी बेसिक बोरिंग इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने इन नाजुक कंधों पर उठा रखी है। अब देखिए यार, अक्सर होता यह है ना कि हम कुछ चीज़ों को रूल्स के हिसाब से पेयर करते हैं, लाइक हम हमेशा रेड एंड येलो को साथ में नहीं पेयर करते क्योंकि हमें लगता है कि ओ दोनों ही बहुत ब्राइट कलर्स हैं, इन दोनों को हम किस तरीके से पेयर कर सकते हैं। लेकिन जेन ज़ी जो है इसे रीडिफाइन कर रहे हैं और वो हर रूल को तोड़ रहे हैं। मतलब अगर आपने ये रूल बनाया था कि आपकी पूरी एक्सेसरीज जो है वो सिल्वर कलर की है तो आप गोल्डन उसमें ऐड नहीं कर सकते, लेकिन नहीं, ये मिक्स मैच करके पहन रहे हैं, स्ट्राइप्स को पहन रहे हैं, पोलका डॉट्स के साथ सारे भड़कीले कलर्स को एक साथ पेयर कर रहे हैं। सो बेसिकली हर रूल को तोड़ने का अगर किसी ने ऐसे जिम्मा उठा लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लिया ना, तो वो है जेन ज़ी। आप बताइए मुझे कि आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा मतलब क्षेत्र है, कौन सा मतलब ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें जेन ज़ी जो है वो कमाल कर रहे हैं। मतलब मिलेनियल्स थोड़ा सा यू नो ऐसे अपनी ईगो को साइड में रखकर एक बार मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको हमेशा से करने का मन था लेकिन आप कर नहीं पाए, लेकिन आप जेन ज़ीज़ वो कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है लेकिन लगता है कि यार हमने क्यों नहीं किया। 3311063 पर मुझे आप मैसेज करके बता सकते हैं व्हाट्सएप पर, तो जल्दी जल्दी बताइए। फिलहाल मेरे ऑफिस वालों से भी आज मैंने इस पर डिटेल डिस्कशन किया, सो उन्होंने क्या कहा वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड रहो आपकी कशिश के साथ और कहते रहो जियो बिंदास।

0: जब मिल सकता है और भी ज्यादा, तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
1: अपने हाला नंबर पर पाइए ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर,
0: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से।
1: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिले।
0: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
2: हाय गाइस, दिस इज बारिश अति खुराना और आप मुझे सुन रहे हो रेडियो ओलिव।
3: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास,
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद। बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
5: लुलू, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: मैं ना जब आई सुबह तो मैं अपने कलीग से अपने ऑफिस वालों से डिस्कस कर रही थी कि यार ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम जेंजीज कर लेते हैं बड़े आसानी से एंड आप मिलेनियल्स जो है उसे कभी नहीं कर पाए एंड इस बात पे आप हमें शाबाशी देना चाहते हैं। पहले तो सब बड़े ही ऑकवर्ड हो गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं जेंजीज ऐसा कुछ नहीं कर रहे जो हम नहीं कर सकते थे, हम सब कर सकते हैं, मिलेनियल सबसे बेस्ट जनरेशन थी। पीछे से बूमर्स भी बोले कि हाँ नहीं नहीं हमारी जनरेशन सबसे बेस्ट है। लेकिन फिर मतलब 10-15 सेकंड के बाद वो सब शांत हुए एंड फिर उन्होंने बोला कि पर देखो कुछ आदतें हैं जो जेंजीज अच्छे से कर पा रहे हैं, अच्छी आदतें नहीं है लेकिन फिर भी हम भी चाहते हैं कि हम भी ये कर पाए। वेलकम जी, गुड इवनिंग 106.3 रेडियो ऑलिफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहां पर आपकी बेसिक बोरिंग इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखी है। अब देखो यार, मैंने जैसे ही पूछा ना कि बताओ जेंजीज ऐसा क्या कर पा रहे हैं जो आप कभी नहीं कर पाए, तो सबसे पहले मेरे कलीग ने बोला कि जेंजीज नो बड़ी आसानी से कह देते हैं। हम यहाँ पर 30 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, 45 साल के हो गए, 50 साल के भी हो गए, लेकिन हमसे ना नहीं कहा जाता। चाहे हम कितने भी बड़ी पोस्ट पे हों, हम नो नहीं बोल पाते। जो मैनेजर पोजीशन पे हैं वो कहने आते हैं कि कोई हमसे छुट्टी मांगने आता है, इमोशनल स्टोरी सुनाता है, हम तब ना नहीं बोल पाते। एंड जो अभी नॉर्मल एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं, जो मैनेजर पोजीशन पे नहीं है, वो जब छुट्टी मांगने जाते हैं अपनी इमोशनल स्टोरी सुनाते हैं एंड अगर सामने से बॉस कह देता है लेकिन काम बहुत है, छुट्टी नहीं मिल पाएगी, तो वो नो नहीं कह पाते। पर जेंजीज को आप चाय पीने जाने से रोक दो, वो नो बोल देंगे कि नो आई डोंट वांट टू डू दिस जॉब। ये एक चीज़ है जो मेरे कोवर्कर्स ने मुझे बताई कि वो जो है जेंजीज में काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। ऐसी और कौन सी चीज़ें हैं जो आप आज की जनरेशन में अप्रिशिएट करना चाहते हो? 3311063 पर मुझे मैसेज करके बताओ और बातचीत जो है क्या क्या हुई मेरे कोवर्कर्स के साथ वो भी मैं बताऊंगी आपको। स्टे ट्यून रहो आपकी कशिश के साथ, अमेजिंग गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, वॉल्यूम बढ़ाओ, इन्जॉय करो और कहते रहो जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

0: Listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: From vacation in your hometown, तो routine start करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब कतर में shopping करें best prices पर। सिर्फ Nesto Hypermarket में। Groceries हो, fresh food हो या daily essentials, सब कुछ एक ही जगह amazing prices पर। तो अपनी shopping को बनाए और भी profitable। Nesto Hypermarket, 152nd branch now open in Old Passport Office, Algarafa. Nesto,
2: all that you need. बातें नहीं, energy का booster मिल रहा है। क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर जियो बिंदास
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ
4: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
5: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

प्राण जाए पर एस्थेटिक्स ना जाए, मतलब अगर आपको ये नहीं समझ आया है तो आप शायद जेंजी नहीं हैं, आप मिलेनियल हैं। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिस पर, मैं हूँ आपकी कसोशन शो आपके लिए लेकर आ गई जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर बेसिक बोरिंग इवनिंग को आपकी मैं जबरदस्त बनाने का बीड़ा अपने इन नाजुक कंधों पर उठाकर चल रही हूँ। अब देखिए, प्राण जाए पर एस्थेटिक्स ना जाए, मतलब देखिए लाइफ डेथ सिचुएशन हो सकती है, कितना बुरा हो सकता है, लेकिन एक जेंजी हमेशा अपने एस्थेटिक्स में रहता है, मतलब उसका फोटो जो है वो परफेक्ट आना चाहिए, कैप्शन परफेक्ट होना चाहिए, हेयर शुड बी परफेक्ट। एंड आपको भी ये चीज़ काफ़ी बार इरिटेट करती होगी, आपके कलीग्स होंगे, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपका पार्टनर भी हो सकता है जो बेसिकली जेंजी हो एंड वो तैयार होने में टाइम लगा रहे हैं, भले ही आप कितने भी लेट हो रहे हैं, आप उन्हें रश कर रहे हैं कि यार जल्दी चलो, लेट हो रहे हैं एंड वो कह रहे हैं दो मिनट, मेरे एस्थेटिक्स जो है वो मैच नहीं कर रहे, ये मेरी वाइब से मैच नहीं कर रहे मेरे कपड़े, मुझे वाइब नहीं आ रही इन कपड़ों में, एक फ़ोटो और ले दो, अच्छी नहीं आ पाई है, इंस्टा वर्दी फ़ोटो नहीं आई है। सो ये सारी जो चीज़ें हैं ये जेंजीज किया करते हैं एंड मिलेनियल्स नहीं करते हैं। सो आज डिस्कशन हम इसी बारे में कर रहे थे कि मिलेनियल्स जेंजीज की ऐसी कौन सी चीज़ है जो अप्रिशिएट करते हैं, ऐसी कौन सी हैबिट है जो अप्रिशिएट करते हैं, एंड काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि यार ये अपने आप को काफ़ी प्रायोरिटी देते हैं, मतलब चाहे कितनी भी सीरियस सिचुएशन हो, कितनी भी लाइफ डेथ सिचुएशन हो, ये खुद को प्रायोरिटी देते हैं, खुद की प्रेफरेंसेस को सबसे आगे रखते हैं कि अगर इनकी फ़ोटो अच्छी आनी चाहिए तो मतलब कुछ भी हो, भले ही सूरज डूब चुका हो लेकिन ये सूरज को फिर से ऐसे करेंगे कि नहीं नहीं नहीं नहीं, हमारी अच्छी फोटो लो अभी के अभी, चाहे कितने भी लेट हो रहे हो। सो ये कुछ ऐसी क्वालिटी आई थिंक जेंजीज की जो और किसी जनरेशन में अभी तक तो नहीं देखी गई थी। सो मुझे ऐसा लगता है मिलेनियल्स को भी ऐसे ईगो ईगो साइड में रखकर ये कुछ चीज़ें जो है जेंजीज से सीखनी चाहिए। मैं हूँ आपकी कशिश, आपके क्या व्यूज़ हैं आप मुझे बता सकते हैं 3311106 पर। फिलहाल अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कशिश के साथ इंजॉय करो और कहते रहो जी विंदास।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: जब मिल सकता है और भी ज्यादा तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
2: अपने हाला नंबर पर पाइए ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर
1: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से
2: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिलें
1: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू
3: बातें नहीं एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर जियो बिंदास
4: Zabardast evening. Make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

तो इस पूरे आर में हमने बात करी कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप, यानी मिलेनियल्स जो हैं, अगर आप मिलेनियल हैं तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, जेंजीज से जो है वो सीख सकते हैं। बहुत सारे ओपिनियंस, बहुत सारी बातें हमने की, लेकिन अब वक्त आ गया है फैशन की बातचीत करने का। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल एफ एयर, मैं हूं आपकी कशिश, शो आपके लिए लेकर आ गई हूं जबरदस्त इवनिंग, जहां पर आपकी बेसिक बोरिंग इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखी है। अब देखो यार, क्या होता है ना कि कुछ ऐसे ड्रामेटिक कलर कॉम्बिनेशन होते हैं जो कि हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। हमने जैसे शो की शुरुआत में बात की थी कि जेंजीज हर रूल को बदल रहे हैं, सो अब जो है हम फैशन की बात अगर कर रहे हैं, सो उसमें भी कुछ ऐसे कलर कॉम्बिनेशंस हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। सो एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, लेवेंडर एंड यू नो लाइट ग्रीन जो होता है ना, पैरट ग्रीन, वो साथ में बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत अच्छा लगता, सच में बहुत अच्छा लगता है। आप मिंट ग्रीन भी ट्राई कर सकते हैं, सो एक बार लेवेंडर या लाइलैक को आप लाइट ग्रीन के साथ पेयर करके देखिए, अमेजिंग लगेगा। उसके बाद सेकेंड कलर कॉम्बिनेशन है इज रानी पिंक, एंड रानी पिंक को अगर आप मस्टर्ड येलो के साथ पेयर करते हो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, बिल्कुल आप किसी ना इंडियन डेजर्ट की तरह लगोगे, डेजर्ट मतलब खाने वाला डेजर्ट, ठीक है। सो एक बार ये कलर कॉम्बिनेशन ज़रूर से ट्राई करना। बाकी अगर फैशन के बारे में और कुछ आपको टिप्स चाहिए, या अगर फैशन की बातचीत करने में आप बहुत इंटरेस्टेड रहते हो, सो आप मुझे जो है मैसेज कर सकते हो 3311063 पर। मैं हूँ आपकी कशिश, फिलहाल अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: रेडी टू लर्न, टू प्ले, टू ग्रो विद मज़राती।
2: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मज़राती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ। ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मज़राती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस।
3: बैक फ्रॉम वेकेशन इन योर होम टाउन तो रूटीन स्टार्ट करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट प्राइसेस पर सिर्फ नेस्टो हाइपरमार्केट में। ग्रोसरीज हो, फ्रेश फूड हो या डेली एसेंशियल्स, सब कुछ एक ही जगह अमेजिंग प्राइसेस पर। तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी प्रॉफिटेबल। नेस्टो हाइपरमार्केट 152nd ब्रांच नाउ ओपन इन ओल्ड पासपोर्ट।

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: Back from vacation in your hometown, तो routine start करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं. अब कतर में shopping करें best prices पर. सिर्फ Nesto Hypermarket में. Groceries हो, fresh food हो या daily essentials, सब कुछ एक ही जगह amazing prices पर. तो अपनी shopping को बनाएं और भी profitable. Nesto Hypermarket, 152nd branch now open in Old Passport Office, Algarafa.
2: Nesto, all that you need.
3: Hi, this is Amitabh Bachchan and you're listening to.
4: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर जियो बिंदास
5: Zabardast evening. Make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores. Where the world comes to shop.

0: हम सबके फोन में जो है वो एक फोटोज का मेमोरी वाला सेक्शन होता है, मतलब जो हर साल दिस ईयर दैट डे या दिस डे दैट ईयर ऐसे करके पॉप अप होता है, मतलब इस साल जो है आप इस डेट पर क्या कर रहे थे. एंड आज यानी 5 सितंबर को मैं पिछले साल अपने कॉलेज के टीचर्स को विश कर रही थी, उससे पहले मैं अपने स्कूल के टीचर्स को विश कर रही थी. सो 5 सितंबर हमेशा जितनी भी फ़ोटोज़ मेमोरीज में आ रही हैं सब में मैं अपने टीचर्स को विश करती हूँ, या तो मेरी टीचर्स के साथ फ़ोटो है या तो मेरी जो है टीचर बन के फ़ोटो है बिकॉज सेलिब्रेशन चल रहा था. सो आज इंडिया में जो है टीचर्स डे सेलिब्रेट होता है एंड हम में से बहुत सारे लोग जो है वो टीचर्स डे किसी ना किसी अलग अलग दिन पे सेलिब्रेट करते हैं. इंटरनेशनल टीचर्स डे कुछ लोग सेलिब्रेट करते हैं और हर जगह का अपना अपना नेशनल टीचर्स डे भी है. सो आज मैंने सोचा कि क्यों ना हम बात करें टीचर्स पे और उनके उन पेटेंट डायलॉग्स पर जो आपने सुने ही सुने हैं. जैसे कल जो है मैं रियादा मेडिकल सेंटर पे हमारा जो बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब वाला इवेंट था उसमें गया एंड इट वॉज अ ह्यूज सक्सेस, सब बहुत खुश थे. लेकिन वहाँ इतने सारे बच्चों के बीच में खड़े होकर मुझे जो है टीचर वाली वाइब आ रही थी एंड मुझे जो है मैंने एक बार को उनको बोल दिया आई वॉन्ट पिन ड्रॉप साइलेंस और मेरी लाइफ का मोटिव कंप्लीट हो गया. मैं बस अपनी लाइफ में एक बार ये कहना चाहती थी कि पिन ड्रॉप साइलेंस, बिल्कुल आवाज़ नहीं आनी चाहिए मुझे. एंड मुझे याद है कि मेरी टीचर जो है जब ये कहा करती थी तो हम सच में सोचते थे कि यार मतलब इतने चुप हो गए हम कि अगर पिन ड्रॉप करेंगे तो आवाज़ आएगी क्या. सो ऐसे बहुत सारे डायलॉग्स हैं जो अक्सर हमारी टीचर्स हमसे कहा करती थी. सो आपके स्कूल में आपके कॉलेज में या आपकी लाइफ में जो भी टीचर रहा है उनका पेटेंट डायलॉग क्या होता था, मतलब ऐसे डायलॉग जो अक्सर टीचर बोलते ही बोलते थे, बताइए मुझे 3311063 पर मैसेज करके कि आपकी फेवरेट टीचर जो है उनका एक डायलॉग जो है वो अक्सर क्या होता था. एक डायलॉग तो ये भी होता था ना, ये जो है मेरी लाइफ की वर्स्ट क्लास है, मैंने इससे बुरी क्लास देखी ही नहीं, और वो हर क्लास में जाकर यही कहते थे. बताइए मुझे आपको क्या लगता है कि आपके लिए वो डायलॉग कौन सा है जो आपको जब भी आप अपने टीचर को याद करते हो तो आपको ये डायलॉग याद आता है. 3311063 इज द नंबर, जल्दी से मैसेज करके मुझे बताओ. फिलहाल एक अमेजिंग वाला गाना इंतजार कर रहा है आपका, सो वॉल्यूम बढ़ाकर इंजॉय करो आपकी कशिश के साथ और कहते रहो जियो बिंदास.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास,
2: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद। बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
3: लुलू, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: बातें नहीं एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर जियो बिंदास
2: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
3: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

0: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
1: हाय, दिस इज विपाशा बासु।
2: हाय, आई एम राजकुमार राव।
3: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
4: हाय, दिस इज दिशा पार्डी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो 106.3 FM।

कल अपने पेरेंट्स को बुला के लाना, 100 बार पूछोगे मैं 100 बार बताऊंगी, ये सब सुन के जो है किसी ना किसी टीचर का चेहरा जो है आपके आंखों के सामने जरूर आ गया होगा ना। वेलकम जी, 106.3 रेडियो अलिफ एम, मैं हूँ आपकी कल्चर चैनल शो आपके लिए लेकर आ गई जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बेसिक बोरिंग इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने की बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने इन नाजुक कंधों पर उठा रखा है। सो आज क्या होता है, आज इंडिया में टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। मेरी मम्मा भी जो है एक टीचर हैं, सो आज उन्होंने मुझे फोटोज भेजे कि उनके यहाँ स्कूल में जो है कैसे टीचर्स डे सेलिब्रेट किया गया। एंड पिछले साल तक मैं भी टीचर्स डे इंडिया में सेलिब्रेट करती थी, लेकिन आज मैंने सोचा कि अपने जो टीचर्स हैं उन्हें विश कर देती हूँ व्हाट्सएप पे। सो जिनका नंबर मेरे पास था मैंने उन सबको भेजा, एंड मेरी जो इंग्लिश टीचर थी स्कूल की उन्होंने मुझे कहा कि विश तो ठीक है, हैप्पी टीचर्स डे भी ठीक है, लेकिन तुमने टीचर्स में अपोस्ट्रॉफी एस क्यों नहीं लगाया, यानी एस जो है डायरेक्टली क्यों लिखा है, ऊपर एक कॉमा लगा के फिर एस लिखना होता है, तुम्हारी ग्रामर अभी तक ठीक नहीं हुई, बचपन से इसी बात पे मैंने तुम्हारे मार्क्स काटे, अभी तक तुमने ठीक नहीं किया, कतर में क्या। सो मुझे जो है शर्म आ गई, मतलब मैंने सोचा कि फिर इससे अच्छा तो ना ही विश करती मैं उन्हें टीचर्स डे, ये बिल्कुल नहीं आया मेरे दिमाग में कि अपनी ग्रामर ठीक कर लूँ मैं। पर देखो एक बार जो टीचर होता है ना वो टीचर ही होता है। तो हम बात कर रहे थे कि ऐसे कौन से डायलॉग्स हैं जो अक्सर टीचर बोला करती थी, एंड आपको अपनी टीचर के बारे में आप जब भी सोचते हो तो आपको ये डायलॉग याद आता है। सो बहुत सारे लोगों ने मुझे एक तो पिन ड्रॉप साइलेंस वाला बोला है, एंड कल अपने पेरेंट्स को बुला के लाना ये बोला है, एंड ऐसे बहुत सारे डायलॉग्स मुझे मिले हैं। लेकिन मैं जो है अब उस बारे में भी बात करना चाहती हूँ कि लाइफ में ना हमारे स्कूल के कॉलेज के टीचर्स के अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो उन्हें भी एक हैप्पी टीचर्स डे तो कहना बनता है। सो ऐसे लोग जिन्होंने आपको लाइफ में कुछ ना कुछ सिखाया है उन्हें एक बार अपनी लाइफ का टीचर ज़रूर समझना एंड हैप्पी टीचर्स डे ज़रूर विश करना। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, वॉल्यूम बढ़ाकर इन्जॉय कीजिए आपके फेवरेट गाने आपकी कशिश के साथ, एंड कहते रहिए जियो बिंदास।

0: स्टाइल दोनों पे मैच हुआ प्रोफाइल। बायो भी थोड़ा हटके था एंड रेडियस विद इन अ माइल।
1: 52 राइट स्वाइप्स के बाद ये करिश्मा हुआ।
2: I was totally watching, okay?
1: जिंदगी बदलने आई मेरी जिंदगी में मुस्कान दुआ।

0: कौन चुकी है
1: प्लीज बताओ, मुझे भी जानना है ये राज ताकि मैं चैन से मर सकूं।
2: आगे आगे आगे आगे आगे

0: सेंटर आ।
1: काफी सारे लोगों ने ना मुझे मैसेज किया कि कशिश ये जो आपकी मूवी रिकमेंडेशन होते हैं ये काफी हेल्प करते हैं, और बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी बताया कि यार हमने वीकेंड पे वो मूवीज देखी जो आपने रिकमेंड की थी। यार देखो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर बेसिक बोरिंग इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने इन कंधों पर उठा रखी है। अब देखो यार, आज जो है हम टीचर्स डे पर बात कर रहे थे कि इंडिया में आज के दिन टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, सो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसी मूवीज की लिस्ट बनाई जाए जिनमें जो है एक टीचर ने अपनी टीचरशिप का अलग मुकाम जो है वो साबित किया है, एंड हम सबके लिए वो बॉलीवुड के आइकॉनिक टीचर्स बन गए। सो ऐसी लिस्ट जो है वो मैंने बनाई है ना आप सबके लिए मैं लेकर आ गई हूँ। सो जरा पेन पेपर उठा लीजिए अगर आपके पास है तो, वरना याद कर लीजिए या मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं ये लिस्ट आपको भेज दूंगी 3311063 पर। सो बॉलीवुड की कुछ ऐसी मूवीज जिनमें टीचर्स ने अमेजिंग काम किया है, एंड सबसे पहले तो देखो तारे जमीन पर। तारे जमीन पर इज द बेस्ट मूवी, एंड मुझे सच में तारे जमीन पर देखने के बाद ऐसा लगा था एक बार को कि यार टीचर बन जाते टीचर बन जाते मैं भी बच्चों को ऐसी हेल्प करूंगी, लेकिन मैं टीचर तो नहीं बन पाई लेकिन ईशान अवस्थी जरूर बन के रह गई। एंड हिचकी में रानी मुखर्जी ने बहुत ही अमेजिंग काम किया है। मतलब इसमें ये मूवी देखने के बाद ऐसा फील हुआ कि यार देखो टीचर्स भी तो इंसान होते हैं, हम टीचर्स को हमेशा एक ओहदे पे रखते हैं कि यार इनसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, लेकिन टीचर्स भी अपने फ्लॉ के साथ किस तरीके से एक बच्चे को शेप करते हैं, उनके फ्यूचर को शेप करते हैं, ये हिचकी मूवी ने बहुत अच्छी तरीके से दिखाया है। उसके बाद ये थोड़ी सी ऑफ बीट है लेकिन चक दे इंडिया, मतलब एक गुरु, एक एक टीचर, एक उस्ताद या एक मेंटोर का होना आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, और वो किसी भी तरीके से आपकी लाइफ में आ सकते हैं, वो कोच बन के आ सकते हैं, वो आपकी कलीग बन के आ सकते हैं, वो आपके मैनेजर बन के आ सकते हैं। सो चक दे इंडिया यही प्रूव कर दिया। उसके बाद पाठशाला, शाहिद कपूर इज द मोस्ट चार्मिंग टीचर। मतलब शाहिद कपूर जब पाठशाला में आए थे ना, उसके बाद मुझे भी लगा था कि यार डांस टीचर इज अ नाइस ऑप्शन, ये बना जा सकता है। थ्री इडियट्स ऑफकोर्स, देखो आपकी टीचर्स जो है वो आपको कुछ सिखाए ना सिखाए लेकिन आपके दोस्त और आपकी लाइफ आपको बहुत कुछ सिखा देता है, सो ये भी एक बहुत अच्छी मूवी है। ब्लैक मूवी ऑफकोर्स, अमिताभ बच्चन एंड रानी मुखर्जी, अमेजिंग पेयर। एंड उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट सुपर 30, ऋतिक रोशन का इतना अमेजिंग अलग ट्रांसफॉर्मेशन, अलग लुक जो है वो मैंने आज से पहले नहीं देखा था। सो अगर ये मूवीज आपको याद हो गई है सो वेल एंड गुड, इनमें से कोई एक आप आज देखने का ट्राई कर सकते हो, और अगर सारी मूवीज की लिस्ट चाहिए सो 3311063 पर मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको लिस्ट जो है वो भेज दूंगी। फिलहाल बहुत अमेजिंग गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, वॉल्यूम बढ़ाकर इंजॉय करो आपकी कशिश के साथ, और कहते रहो सी यू बिंदास।

0: सल्तनत। आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Ready? To learn?
2: Yes.
1: To play?
2: Absolutely.
1: To grow?
2: With Maserati.
3: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ।
2: मिल्क, चीज, योगर्ट, लेबनी, एग्स।
3: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस।
4: Hi, this is Air Rahman.
5: Air Rahman.
4: Radio. Listen to my songs on 106.3 Radio Olive.
5: Jio Bindas.
0: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.
6: I'm number one Radio Olive.
7: Baatein nahi, energy ka booster mil raha hai. Kyunki chal raha hai zabardast evening.
8: Zabardast evening. Mere bhai.
7: Sirf Radio Olive par.
8: Zabardast evening.
7: Jio Bindas.
9: Zabardast evening. Make you drive golden with.
10: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
11: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop. Just

0: देखो जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, जाने वाला चला जाता है। और मैं किसी इंसान की बात नहीं कर रही हूँ, मैं वीकेंड की बात कर रही हूँ। बहुत फन कर लिया लेकिन कल वापस ऑफिस के दरवाजे पर जाके खड़े होकर ये सोचोगे कि यार एक दिन और नहीं मिल सकता था क्या। अब देखिए एक दिन और चाहिए फन वाला, मस्ती वाला, मजे वाला, तो वो तो आपको ऑफिस में भी मिल सकता है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग। अब देखिए जबरदस्त इवनिंग पर मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती हूँ, आपके मस्ती के, मजे का, एंटरटेनमेंट का, फन का, एंड आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का। एंड अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं या आप एक मैनेजर हैं, तो आपकी टीम जब ऐसा सोचती है कि यार एक और दिन की काश छुट्टी मिल जाती, तो आपको अजीब तो लगता होगा ना, लगता होगा कि यार मैं तो चाहता हूँ बस मेरे ऑफिस में काम हो एंड सब खुशी से रहे। तो उनकी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपको उठानी है, तो आपको बस रेडियो ऑलिव की टीम को अपने ऑफिस में बुलाना है। सो रेडियो ऑलिव की टीम, उसके आरजेज यानी हम सब आएंगे आपके ऑफिस में आपकी टीम को फन, फॉलिक, मस्ती और मजा कराने के लिए। आपको बस 3311063 पर मैसेज करना है और हमें इन्वाइट करना है कि अपना हैप्पीनेस लाउंज लेकर, जहां पर हम आपकी टीम को रिजुविनेट करेंगे एंड रिवाइव करेंगे बेसिकली उनके अंदर के फन को, ताकि वो यू नो रीएनर्जाइज हो जाएं एंड अपना काम बहुत ही बढ़िया तरीके से करें। सो जल्दी से फोन उठाइए 3311063 पर हमें मैसेज कीजिए एंड अपने फन के लिए, ऑफिस के फन के लिए हमें बुला लीजिए। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में। अमेजिंग वाले गाने आपके लिए लाइनअप करके रखे, वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास
1: रेडियो ऑलिव पर। आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

नाम है, वकरा से दफना की तरफ जा रही थी अपने फ्रेंड के साथ एंड हम कार में थे एंड सामने से जो गाड़ियां आ रही थी जो दूसरे लेन में थी उनकी बीम जो है काफी हाई थी, तो मुझे रियलाइज हुआ कि इसी वजह से मिनिस्ट्री को जो है बार बार ये स्टेटमेंट देना पड़ता है, बार बार सबको अवेयर करना पड़ता है कि ये जो हाई बीम है ये ना काफी रिस्की हो सकती है, ना आपको इस हाई बीम से थोड़ा सा दूर रहना है। वेलकम टू 106.3 रेडियो ऑलिफ पर मैं हूँ आपकी कसुशन शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग जहाँ पर आपकी बेसिक बोरिंग इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब देखो यार, एंटरटेनमेंट की हम बात कर रहे हैं, फन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक सेफ्टी वाली चीज है जिसे इंश्योर करके चलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से मिनिस्ट्री ने कहा है कि आप जो है हेडलाइट जो है जो हाई बीम है उसे थोड़ा सा कंट्रोल करके चलिए, जब उसकी ज़रूरत नहीं है तो उसे कम करके चलिए, क्योंकि ना ये सामने वाले के लिए रिस्की हो सकता है ना, एक्सीडेंट्स का जो है बुलावा हो सकता है बेसिकली। सो मैंने देखा कि रोड पे कुछ लोग हैं जो इन रूल्स का को फॉलो नहीं कर रहे हैं। सो अगर आप अभी जो है रोड पर हैं एंड अगर आपने अभी हाई बीम चला रखी है सो प्लीज़ उसे कम कर लीजिए, क्योंकि वो सामने से आने वाली गाड़ियों के लिए जो है रिस्की हो सकता है एंड एक एक्सीडेंट का बुलावा भी हो सकता है। सो मिनिस्ट्री ऐसी टाइम टू टाइम आपको अवेयर करता रहता है, आपको कहता रहता है, आपको बताता रहता है कि यार क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिए एंड आपके लिए अमेजिंग गाने जो है वो आते रहें, इनका ध्यान हम रखेंगे। मैं हूँ आपकी कशिश, अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, वॉल्यूम बढ़ाकर इंजॉय करो आपकी कशिश के साथ और कहते रहो जियो बिंदास।

तो चलिए जी, आपको टाटा बाय बाय करके यहाँ से जाने का वक्त आ गया है। आप मुझे मिस तो करोगे ना? अगर मिस करोगे तो कोई बात नहीं, कल सेम टाइम पर आ जाऊंगी आपको एंटरटेन करने के लिए और आपकी बेसिक बोरिंग इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने के लिए, क्योंकि मैं हूं आपकी गजिश और ये शो आपके लिए लेकर आई थी मैं जबरदस्त इवनिंग। अब जाते जाते वही कहना चाहूंगी आपसे जो हर रोज कहती हूँ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखो, खाना खाते रहो, पानी पीते रहो, गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाओ और मुझे याद करते रहो। बाकी रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर आप हम सभी आरजेस को जो है वहां देख सकते हैं, हम सबको फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर कोई और बातचीत करनी हो तो 3311063 नंबर सेव करके रख लो मेरे नाम से, इस पे आके मैसेज कर देना। चलती हूँ मैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Back from vacation in your hometown, तो routine start करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब कतर में shopping करें best prices पर, सिर्फ Nesto Hypermarket में। Groceries हो, fresh food हो या daily essentials, सब कुछ एक ही जगह amazing prices पर। तो अपनी shopping को बनाए और भी profitable। Nesto Hypermarket, 152nd branch now open in Old Passport Office, Algarafa।

0: माय लव, ये है मिडनाइट लाउंज।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

ये है मिडनाइट लाउंज। From vacation in your hometown, तो रूटीन स्टार्ट करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट प्राइसेस पर, सिर्फ नेस्टो हाइपरमार्केट में। ग्रोसरीज हो, फ्रेश फूड हो या डेली एसेंशियल्स, सब कुछ एक ही जगह अमेजिंग प्राइसेस पर। तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी प्रॉफिटेबल। नेस्टो हाइपरमार्केट, 152nd ब्रांच, नाउ ओपन इन ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, अलगराफा।

0: ये है मिडनाइट लाउंज
1: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: ये है मिडनाइट लाउंज।
1: बैक फ्रॉम वेकेशन इन योर होम टाउन, तो रूटीन स्टार्ट करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट प्राइसेस पर, सिर्फ नेस्टो हाइपरमार्केट में। ग्रोसरीज हो, फ्रेश फूड हो या डेली एसेंशियल्स, सब कुछ एक ही जगह अमेजिंग प्राइसेस पर। तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी प्रॉफिटेबल। नेस्टो हाइपरमार्केट, 152nd ब्रांच नाउ ओपन इन ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस अलगराफा।
2: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, Radio Olive 106.3.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Yeah, midnight love.
2: Yeah, midnight love.

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

listening to Radio Olive 106.3 FM. 106.3.

सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास 106.3 FM।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास 106.3।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।